0: ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਮੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ. ਬਟ ਮੋਟੋ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ,
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਕੋ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ.
1: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੋ ਉਸੀ ਉਸੀ ਮੋਟੋ ਸੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ओरिजिनल मट्टू साहब के जो बेटे हैं वो ही चला रहे हैं. तो उन्होंने अब और एक्सपेंशन किया है पिछले एक एक डेकेड में, तो उसमें फिर अब हम और दो और स्कूल चलाते हैं. एक का नाम है लिंक्स, वो है नेचर इंस्पायर्ड स्कूल. तो उसका जो मेन कनेक्शन का होप से कनेक्शन का नेचर इंस्पायर्ड स्कूल से जो है कि हम वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, मगर उनका मेन मकसद जो है हम रोज उनको बाहर नेचर में लेके जाते हैं. तो नेचर में उनके लेसन्स होते हैं, वहीं पे उनकी लर्निंग होती है. तो मेन जो उनका मकसद है यही है कि उनका जो कनेक्शन है अपने आप से, दूसरों से और बाकी जो लार्जर जो दुनिया है आसपास हमारे, उससे ज़्यादा कनेक्शन हो. और तीसरा जो हम स्कूल चलाते हैं उसका नाम है अरसा. वो अरसा जैसे जो कॉन्स्टेलेशन होता है उसी पे नाम रखा है. तो उसका जो मेन मकसद है, वो मेन उसका जो है कि वो उसमें फ्रीडम जो देनी चाहते हैं कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं. वो ऑनलाइन एजुकेशन हम वहां से देते हैं, तो आप घर से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अपने रफ्तार से, अपनी स्पीड से पढ़ाई कीजिए. तो जो जो जिन पेरेंट्स को लगता है कि हमको जैसे होम एजुकेशन करना है, या हमको ये जो सख्त जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, उसमें हमारे बच्चों का फिट नहीं बैठ रहा, तो उनके लिए हम बहुत बहुत चॉइसेस दिलवाते हैं.
0: वेरी गुड.
1: तो यही जो स्कूल सिस्टम है वो यही है कि अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से हम मदद कर सकें पेरेंट्स की, बच्चों की, जिनकी अलग अलग डिमांड्स हैं या अलग अलग उम्मीद हैं.
0: बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे इन्होंने बताया भी इतने अच्छे तरीके से ये बच्चों को ट्रेन करते हैं. क्योंकि अक्सर आप कह दें भी बच्चा शरारती है जी, बच्चे नु समझ नहीं आती, पता नहीं बच्चा साडा स्पेशल है, इन्हू समझ नहीं आती. बट आई थिंक वो सारिया कैटेगरीज होंदिया ने, क्योंकि जिन्हों वास्ते वो काम किया जा सकता. जे तुहानू लगता भी तुहाडे किसी दे भी कोई भी बच्चा आंढ गुआंढ अपना जां किसी भी दोस्त मित्र दा जिन्हू चैलेंजेस फेस करदा पढ़ाई दे विच स्पेशली, क्योंकि एजुकेशन के लेवल से हम बेंचमार्क है, उसी से देखते हैं भी बच्चे को एजुकेशन में कितना ध्यान लगता है, कैसा पढ़ पाता नहीं पढ़ पाता. बट ये अभी वो स्पेशल इन पे मूवीज भी बनी है कई बार है ना, इन सब चीजों के ऊपर आमिर खान ने भी बनाई थी मूवी स्पेशल नीड है ना. तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो वह जे तुहानू लगता भी कोई इत्थे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बच्चे, तो थर्ड अकैडमी जिहड़ी एक ऐसी अकैडमी जिथे तुसी अपने बच्चे नू लैके जा सकते हो, तो अपने बच्चे नू एक बार उत्थे चैक करवाओ. तो आई थिंक दूसरी कैटेगरी से जो है उस पर भी बात करते हैं. बट अगर किसी को कैसे पता चले भी उनके बच्चों को इस स्कूल में जाने की जरूरत है, या कैसे वो हो सकता है?
1: तो एक एक तरीका तो यही है कि फॉर्मल असेसमेंट आपने कराई हो, जैसे कोई साइकाइट्रिस्ट से फॉर्मल असेसमेंट कराई हो, या आपको
0: साइकोलॉजिस्ट,
1: हाँ साइकोलॉजिस्ट से, या नहीं तो जैसे आपके फैमिली डॉक्टर से ही बात करके, अगर आपको लगता है कि मेरे हमारे बच्चों में कोई स्पेशल नीड्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, या बिहेवियरल चैलेंजेस हैं, तो उनको आप हमारे स्कूल लाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आप को टूर देंगे हम अपने स्कूल का. हमारे अलग अलग फैसिलिटीज हैं, पूरा कैंपस है यहाँ पे, उसमें लाइब्रेरी है, जिम है, बाकी हमारे अंदर ही स्कूल के अंदर ही हम अपने सर्विसेज रखते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी हो गई, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, साइकोलॉजी सर्विसेज हो गई. हमारे स्कूल में ही जो बच्चे हैं उनको अगर चाहिए, ज़रूरत होती है, तो उनकी फिर हम फॉर्मल असेसमेंट भी करते हैं
0: जी.
1: तो वो तो फिर बात करने से ही पता चलेगा.
0: फॉर्मल असेसमेंट जो स्कूल में कर लेते हैं या बाहर से वो करवा के हैं?
1: दोनों चीजें हो सकती हैं. असेसमेंट तो हम वो उन स्टूडेंट्स का करते हैं जो ऑलरेडी ہیں انرو

0: मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तो मतलब फिर बात करने से पता चलता है, आप अपने आसपास दोस्तों से बात करिए या डॉक्टर से बात करिए या हमार से बात करिए, हम आप हमार जैसे आपने बोला हम 30 साल से ये काम कर रहे हैं तो हमको भी थोड़ा तजुर्बा है, तो हम आपको मदद बिल्कुल करेंगे।
1: बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा है वैसे, क्योंकि मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ लोगों से, तो आई थिंक ये साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते लोग डर जाते हैं कई बार, है ना, क्योंकि उनका लगता है पता नहीं क्या, बट साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो भी आई थिंक भी इसको एक्सेस कर सकता है।
0: हाँ।
1: उनके पास भी तरीका होता भी वो कैसे कैलकुलेट करता है, क्योंकि जरूरी नहीं भी आपका बच्चा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा तो उसको पता ही नहीं अभी कैसे करना, बड़ी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। और ये मुझे लगता है सबसे बेसिक प्रॉब्लम है ADHD, ये वो ऑटिज्म वगैरह जो बोलते हैं हम लोग।
0: हाँ जी, ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, बाकी और उस और भी चीजें होती हैं जैसे बिहेवियरल चैलेंजेस हो गए जिनको कभी कभी कोई नाम भी नहीं दे सकते, या और जैसे मैंने बोला आपका अगर असेसमेंट हो रखा है तो फिर ठीक है, असेसमेंट नहीं भी हो रखा फॉर्मली तब भी हम आप आके हमसे बात कर सकते हैं
1: जी। तो बड़ा बहुत वधिया स्कूल है जी, जे जे मोटे मोटे एक्सचेंज कही है, जिदे च कई बार आप पेरेंट्स जेडे ने जेडे बाहरों आंदे हैं इमीग्रेंट पेरेंट्स, तो उनके लिए चैलेंजेस लगते हैं भी यार हमारा बच्चा ही नहीं पढ़ पा रहा, तो हम तो दुनिया 7 समुद्र पार करके आए थे भी, हमारा बच्चा जो है वो यहाँ पे अच्छा फ्यूचर बनाएगा। और हम लोगों के पास फ्यूचर के बारे में सोचने का मकसद सिर्फ अच्छी एजुकेशन ही है।
0: बिल्कुल,
1: हमें यह लगता भी आज भी हम अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे बच्चे तो वो नहीं कुछ कर सकते।
0: हाँ।
1: तो बट उसके अलावा भी बच्चे कई सक्सेसफुल होते हैं, एजुकेशन थोड़ी लेके भी वो अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, उनको कई तरीके की गाइडेंस दी जा सकती है जिससे वो सक्सेसफुल हो जाएं। बट अगेन ये बात भी सच है, भी अच्छी एजुकेशन होना बड़ा इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक बट इट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन, अगर नहीं भी उतना अच्छा कर पा रहे बच्चे तो फिर भी उनके पास ऑप्शन रहती है कुछ करने के लिए।
0: हाँ, और हम जो है वो किंडरगार्टन से 12th-12th तक पूरा चलाते हैं स्कूल,
1: ठीक है,
0: तो आगे हाई स्कूल में भी हम लोग अलग अलग ऑप्शंस देते हैं अपने बच्चों को, तो मतलब मेन एक ऑप्शन तो है ही कि आप अल्बर्टा का हाई स्कूल डिप्लोमा कर लीजिए, मगर हम और भी ऑप्शंस देते हैं उन लोगों को, उन बच्चों को जो वो डिप्लोमा नहीं कर पाए, तो उनके लिए और नॉलेज या स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग होती है वो भी कराते हैं। अभी हम अब अगले एक साल में अपना एक स्टेम लैब बना रहे हैं, अपने ये स्किल्स के लिए शॉप्स बना रहे हैं, तो वो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। बाकी जैसे मैंने बोला हम लोग पूरा किंडरगार्टन से लेकर 12th तक फुल एजुकेशन पूरी जर्नी तक हम देख सकते हैं।
1: वेरी गुड, बड़ा अच्छा है जी। आपने जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे भी बच्चों को जो आपका एक स्कूल है, एक तो ये स्पेशल लर्निंग वाला जिसको हम बोलते हैं, दूसरा स्कूल
0: लिंक्स जो है
1: हाँ। तो जिसमें आप डेली बाहर लेके जाते हैं।
0: हाँ जी, वो पूरे 12 महीने रोज स्कूल के दिन जो भी वेदर हो,
1: -20 के अंदर हो तो
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: करिकुलम होता है, क्योंकि अगर -20 से ज्यादा हो
0: हाँ वो ज्यादा ही हो जाता है,
1: ज्यादा हो जाता है। मुझे याद है भी हमारे लीडर रेचल नॉटली है ना, तो मेरे उसमें डोर नॉकिंग कर रहे थे,
0: अच्छा,
1: तो इतनी ठंड थी और -20 के आसपास ऊपर नीचे टेम्परेचर जा रहा था,
0: अच्छा,
1: और वो भी बड़ी आ रही थी, स्टॉर्म भी बड़ा था,
0: अच्छा।
1: तो हमारे काफी बंदे जो इकट्ठे हो गए, तो मुझे लग रहा था यार अब नहीं होगा आज, क्योंकि ये लीडर ने नहीं बोला भी ये डोर नॉकिंग करनी, बट वो कहते -20 के अंदर अंदर हो,
0: हाँ।
1: पर वो टेम्परेचर जो था -20 के कभी ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहा था शाम को। तो जिस टाइम पर उन्होंने बोला था 5 o'clock हम शुरू करेंगे, तो वो आई थिंक 4:45 ही पहुंच गई वहां पर,
0: अच्छा अच्छा,
1: और हम लोग पहले पहुंचे हुए थे भी चलो जलने के लिए, और वो किंतु परंतु वाला उसने वर्का ही जिसको कहता पंजाबी में फाड़ दिया भी कोई किंतु चलो, और वो काफी अच्छी हमारी वो डोर नॉकिंग थी। कहने का मतलब भी 20 माइनस जो है वो एक बेंचमार्क होता है यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इससे कम होगा तो फिर ही बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, और हम लोग कई बार 5, 7, 10 माइनस पे भी डरने लगते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमें नहीं जाना। तो बच्चों के लिए ये यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली -20 इज ओके, तो अगर डेली लेके जाते हैं आप उनको,
0: हाँ, डेली बाहर लेके जाते हैं, अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं, पार्क्स वगैरह जो होते हैं, उनकी जो लेसन जो होते हैं, उनकी जो टीचिंग

0: जो होती है
1: जी.
0: वो यही है कि आप थोड़ी बहुत ऑनलाइन कर लो, कंप्यूटर पे कर लो इंडोर्स, मगर फिर बाकी दिन जो है आपके लेसन जो हैं वो बाहर ही होंगे, तो आपका जो कनेक्शन है दुनिया से वो थोड़ा बना रहे, आप सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं
1: बच्चे. हाँ. मतलब कोई भी बच्चे, नॉट ओनली जस्ट
0: नहीं नहीं सिर्फ स्पेशल नीड्स के नहीं, बाकी हमारे जैसे जो दूसरे जो दो स्कूल हैं, एक लिंक्स हुआ एक अरसा हुआ, वो सारे बच्चों के लिए है.
1: अच्छा, सारे बच्चों, वेरी नाइस. क्योंकि मेरा बेटा जो है, मैंने जैसे बताया अभी, साइंस स्कूल भी है यहाँ.
0: हाँ जी, हाँ जी.
1: पहले एक ही साइंस स्कूल होता था, अब तीन साइंस स्कूल है कैलगरी में. तो क्योंकि जो भी पेरेंट, जैसे हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो ऐसे बड़े दोस्त होते जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनको होता हमारा बच्चा साइंस स्कूल में जाए तो शायद तो बट वो उसका जो सिस्टम, वो उसका नाम साइंस स्कूल है, बट उसमें भी यही प्रोसेस ही है.
0: अच्छा.
1: कि वो जो ज्यादातर एजुकेशन है आपको आउट ऑफ क्लासरूम देते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 50 के आसपास जो क्लासेज हैं,
0: हाँ.
1: वो बच्चों को बाहर लेके जाते हैं और टूर करवाते हैं.
0: हाँ जी.
1: और फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जंगल में ले जाएंगे कभी,
0: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: पार्क में, कभी जू में, जहां भी उनको लगे वहां जाके उनको पढ़ाते हैं. और वहीं से अगर टैलस कन्वेंशन सेंटर है तो टैलस साइंस पार्क जो भी बोलते हैं वहां, तो ऐसे ही आई थिंक भी आप भी.
0: हाँ, हम भी ऐसे करते हैं. और उसका जो एक्सपीरियंस है, जो मैं तो देखता हूँ बच्चों को, मतलब देखने से मेरे को यही लगता है कि काश मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ा होता, तो मतलब उसका एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग है.
1: बिल्कुल. तो वो खुल जाता है उनका दिमाग.
0: हाँ, हाँ.
1: तो अभी हमारे बेटे ने अभी जैसे हाई स्कूल किया.
0: अच्छा.
1: तो हाई स्कूल में वो आ गया था दूसरे 10th 11th ये डिफरेंट स्कूल में.
0: हाँ.
1: और साइंस स्कूल उसने करने के बाद, तो अब उसका जो है वो बेहिचक, मैं सोचता हूँ भी वो फ्री डिसीजन लेना चाहता है.
0: बिल्कुल.
1: हालांकि वो डरता रहता था पहले, तो मैंने उसको कहा भी यार तू डरा मत कर भी, तेरे तो अपना तू हमसे भी डिस्कस कर सकता है जो भी करना. तो वो अब खुल के अपने बारे में अपने तरीके से सोचता है.
0: बहुत अच्छा.
1: तो इट्स गुड कि हमें एज ए पेरेंट्स खुशी होती है.
0: हाँ, बिल्कुल.
1: कि जब बच्चा ऐसा करना सोच जाए कि उसको अपने डिसीजन कैसे मेक करने हैं और सारी चीजें. तो अगेन, क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री पे के लिए जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है.
0: हाँ.
1: उसके कॉन्फिडेंस और उसकी बाकी चीजें जो है वो,
0: कॉन्फिडेंस हो, उसको खुशी मिले,
1: बिल्कुल
0: वो मतलब सेटिस्फेक्शन हो उसको अपनी जिंदगी में.
1: हाँ,
0: उससे ज्यादा मतलब सिर्फ या तो ज्यादा डिग्रीज के पीछे पीछे भागना या पैसे के पीछे पीछे भागना, वो तो चलो शॉर्ट टर्म हो गया.
1: बिल्कुल.
0: हाँ. मगर ज्यादा लॉन्ग टर्म तो हम पेरेंट्स को यही चाहिए, और सबको ही पता है
1: कि
0: बस अपने बच्चों की खुशी चाहिए.
1: बिल्कुल. तो और ये कोई भी वो हमें कई बार बताता है आप लोग, आपको खुशी चाहिए. चाहिए तो खुशी, बट ये कि जब देखता है भी हम कितना स्ट्रगल करते हैं, भागते रहते हैं लाइफ में इतना, तो उसको फील होता भी नहीं इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है.
0: हाँ.
1: आप आराम से भी कर सकते हो.
0: और वो दूसरी तरफ भी चलता है कि अगर बच्चों को कॉन्फिडेंस आया
1: जी,
0: तो वो कॉन्फिडेंस फिर पेरेंट्स को भी दिलवाता है कि पेरेंट्स को फिर डरने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपने बच्चों को इतना वो काबिल बन गए कि उनको इतना कॉन्फिडेंस है, तो चलो वी कैन ऑल्सो ट्रस्ट देम. हमको तो आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप जो करोगे ठीक ही करोगे.
1: मैं सोचता हूँ बच्चों को पैसे के बारे में नॉलेज होनी बड़ी जरूरी
0: है. हाँ, बिल्कुल.
1: और जब तक उनको पैसा कमाने से ज्यादा खर्चना आना बड़ा जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: और अगर कम पैसे है तो कम में कैसे अच्छा एंजॉय करना, और ज्यादा पैसे है तो ज्यादा. हाँ. को कैसे संभालना, ये सारे जो आर्ट है ना ये भी काफी इम्पोर्टेंट है.
0: तो सबका ही है.
1: क्योंकि मोस्टली क्या होता भी कई बार पेरेंट्स हम जो बैक होम में करते हैं, तो बच्चे सिर्फ पेरेंट्स उनको बोलते हैं पढ़ो पढ़ो काम करो. हाँ. ये करो वो करो पैसा करियर बना लो. और कई प्रोफेशनल करियर्स के अंदर जाने के बावजूद भी लोग जो है वो फाइनेंशियली उतना वो नहीं कर पाते, तो आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है.
0: बिल्कुल, बिल्कुल. और जो हमारी जैसे जो स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे हम जो ओरिजिनल फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने तो चलो स्ट्रगल करी ही है.
1: जी जी.
0: तो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए जो ये जो सोसाइटी में हम लाए हैं उनको बच्चों को, उस सोसाइटी की जो ब्यूटी है, उस सोसाइटी की जो स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक उनको फ्लरिश करना होना है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल. ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस सोसाइटी में हम आ गए हैं. तो इसकी और भी बातें करेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम इनके साथ लगा के फिर मैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो चल रहा है आपको पता है ना.
0: हाँ.
1: टोरंटो में 2 दिन के लिए अभी है, कल भी

0: उन्होंने इन्वेस्टमेंट से पहले पार्टियां ये करनी शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी इन्होंने काफी फन कर लिया. बट ये है कि आज और कल दो दिन का है जिसमें काफी दुनिया भर की अच्छी अच्छी कंपनी जो है वो मेजर बिगर कंपनी जो है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कार्नी के ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप है, तो वो काफी इन्वेस्टमेंट लोगों ने कहा ऑलमोस्ट $200 बिलियन की मैं सुन रहा था अभी इतनी इन्वेस्टमेंट. बट इनकी जो आस है वो अगले 5 साल में $100 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट.
1: अच्छा,
0: इतना पैसा जो है वो ये इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं यहाँ पे.
1: ओके ओके.
0: जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और कोई भी प्रोजेक्ट हो जिससे कनाडा जो है वो एनर्जी वन ऑफ देम, तो इन सब में नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें और कनाडा एक डिफरेंट शेप में बन जाएगा अगर ऐसा जैसा ये प्लान करें. तो काफी टैक्सेस की रिबेट भी दे रहे हैं जिससे जो पार्टीज वाले हैं वो उस पर नाराज भी हो रहे हैं भी इतने पैसे आप छोड़ रहे हो जब कंपनी अच्छा. को दोगे. बट अल्टीमेटली अगर एज लॉन्ग एज ये अच्छा रहे प्रोजेक्ट और जैसे थ्रेट के अंदर हम जा रहे हैं यूएस के साथ, तो आई थिंक भी बेटर है हमें यूनाइटेड होना और अच्छे प्रोजेक्ट हमारे पास खुद ही होने चाहिए. तो अब हमें दूसरी दुनिया के साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा.
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल.
0: जो हम मिला रहे हैं ऑलरेडी काफी अच्छा. कार्नी साहब बार बार कहते हैं भी हमारे पास अब $1.5 बिलियन का लोगों का एक्सेस है, मार्केट है. नॉट ओनली कनेडियन मार्केट को नहीं हम देखते, यूरोप ने हमारे साथ किया और कई कंट्रीज ने हमारे साथ ऑलरेडी हाथ मिला लिया. सो आई थिंक इट्स गुड. उसके बारे में बात करेंगे, बिजनेसेस के बारे में. एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं.
1: हाँ जी.
0: तो ब्रेक के बारे में हम अपनी बातें जो है इसी तरीके से जारी रखेंगे. मैं एक बार फिर तो तुम दसदा भी अज साडे नाल गौरव जैन आए ने जेडे की थर्ड अकैडमी स्कूल है जी, बहुत वधिया इत्थे चलदा. सो थर्ड अकैडमी स्कूल नूं रिप्रजेंट करदे आ. पिछे वैसे बैक ऑफ दा दस रहे से इन्हां दे बच्चे भी उत्थे पढ़दे आ दो.
1: हाँ जी.
0: इन्होंने अपने बच्चों को भी वहां पे डाला. और थर्ड अकैडमी ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चे जो है वो चैलेंजेस फेस करते हैं लर्निंग्स में किसी भी तरीके का. जे तुहानूं लगदा वी बच्चे पढ़ाई दे विच पिछे रह रहे ने ते उन्हां दा दिल नहीं लग रहा जां लिखन च, कई बार मुझे पता भी वो सीधा लिख भी नहीं पाते बच्चे, है ना, अक्षर कोई उल्टा मुल्टा, मतलब कई तरीके के चैलेंजेस होते हैं. तो वो वन ऑफ देम है. तो कुछ भी चैलेंज हो तो आप इनके स्कूल में जाएं, थर्ड अकेडमी गूगल कर लें.
1: हाँ जी, thirdacademy.ca है वेबसाइट.
0: हाँ जी.
1: और बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो है linksLYNX.education और अरसा की वेबसाइट है URSA.education. बाकी अगर किसी भी कोई भी कम्युनिटी मेंबर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई मदद भी चाहिए तो वो मेरे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मेरा ईमेल एड्रेस है जी गौरव के लिए जी और फिर जैन jain@thirdschools.ca.
0: वेरी नाइस जी. तो इनसे थोड़ी सी बात और करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक लाके फिर वापस मिल जाएंगे बाकी दी गल्लां.
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ. www.iwebguy.ca.
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर.
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है.
3: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से.
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर.
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है.
4: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं.
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890. लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक.
4: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी.
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए. सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन. चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं. हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में. ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक. अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए. आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी. Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.

0: और आपकी पूरी टीम का,
1: हाँ जी,
0: स्कूल की, सबको हमारी तरफ से थैंक यू.
1: थैंक्स.
0: थैंक यू. और एक मैं ब्रेक लेता हूँ, तो फेसबुक वाले दोस्तों को भी थैंक यू वेरी मच. तुसी प्रोग्राम देख रहे हो, सुन रहे हो, तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस मिलते हैं. तो ब्रेक तो बाद आपां अपनियां गल्लां बता जिहड़ियां जी इसे तरीके नाल जारी रखांगे. सबरंग रेडियो 94.7 FM ते, जिहड़ा कि तुसी मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम नूं 7 to 8
2: अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो.
3: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक. वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक.
2: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करो 5873606890.
3: छोटे परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी.

0: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदिया ने तो फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दिया दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
1: The time is 9 p.m.
2: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

रेडियो सरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन मंगलवार सितंबर महीने की 15 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। 5 बजे सवलीन कौर जसड़ प्रोग्राम पेश करनगे, 8 बजे जलाल जी प्रोग्राम पेश करनगे राशा वरविद जलाल, ते रात 9 बजे पंजाब तो जितेंद्र पन्नू जी नाल मुलाकात की जाएगी। ये साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। अज के इस प्रोग्राम दे विच हमेशा की तरह खबरां ते चात मारांगे। खबरां बड़ियां अहम कैनेडा दियां, USA दियां, लोकल ते आस पास दियां। इन्हां खबरां ते चात मारन तो पहला जरा मौसम की गलबात कर लईए। इस वेले कैलगरी शहर के 8 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर है। शहर के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश, मौसम इस तरह का बनया होया कई दिन तो। कल असी साझा की खबर कि इस नाल जो हारवेस्ट सीजन है, कटाई का सीजन है फसलों का दक्षणी अल्बर्टा दे विच, उस दे कुछ समीकरण विगड़ गए ने। पर कल तो मौसम में बदलाव आ रहा, दिन का तापमान 17 डिग्री होगा, तिखी धुप निकलण की संभावना है, तो वीरवार को भी 20 डिग्री से धुप, शुक्रवार को भी इस तरह, वीकेंड से भी इस तरह, तो फिर सारा वीकेंड इस तरह रहने की संभावना है, तो अगला हफ्ता भी 15 से 20 डिग्री सैलसीयस दिन का टैंपरेचर होगा, अजिहा अनुमान है। तो बारिश तो राहत मिलेगी, हल्की फुल्की कितें हो सकती है, पर ज़्यादा करके राहत ही होगी।

0: समान फ्लोरिंग करदा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल परया है एना दा शोरूम अज ही एना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
2: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
2: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया 6 लोकेशन का सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222